उवाच पुखसम्बन्धी नूर्वर्षः कुर्सः चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह

असंख मूर्खन घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाह जोर असंख गड़बड़ हत्या कमाह असंख पापी पाप कर जाह असंख कूड़ियार कूड़े फिराह असंख मलीश मल पखाह असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वार आना जावा एक बार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख कह हे सिर भार हो अखरी नाम अखरी साला हो अखरी ज्ञान गीत गुण गा हो अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्हें लिखे तिस सिर नाहि जे फरमाए तिव ते पाहि जेता कीता तेता नाव बिन नावै नाहीं को थाव कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार भरिया हाथ पैर तन दे पानी धोतै उतरसखे मुठ पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओ धोए भरिया मत पापा कै संग धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाह कर कर करना लिख लै जाह आपे बीज आपे ही खाह नानक हुक्मी आवह जाह तीर्थ तप दया दा दान देखो पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाव अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोई विण गुण कीते भगत ना होए सुवास्तात बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन जाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती माफ कवन जित हुआ वाकार वेल न पाया बंडती जे हो वैले कुरान वक्त न पायो का दिया जे लिखन ले कुरान थित वार ना जोगी जान है रुत माफ न कोई जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जान है सोई किव करा का किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखा है एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई।

गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर पंडाकार कर रखी तारे सही तुदनु गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चतना आवन।

मन सोर जोर न सुरती, ज्ञान विचार जोर न जुक्ति, छुटाए संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीत ना कोए। राती रुती थिती वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तस विच जी जुगत के रंग के नाम, अनेक अनंत करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तथा सोहन पंच प्रमाण, नदीप कर्म पवै निशान, कत पकाई उथै पाए, नान गया जापै जाए, धर्म खंड का यहो धर्म ज्ञान खंड का, आख कर्म केते पवन पाणी वै, संतर केते कान महेश, केते बरमे घाट घड़िया, रूप रंग के वेश केतिया, कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते अंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते

जिनका रंभ समन माहि तथा भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोई सचखंड वसै निरंकार कर कर वेख नर नियार तथा खंड मंडल वर्पण जी को कथा।

जात पावहा राती जो सुने आर वैरुण मतभेद हथियार पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक

देवान देव उपमा महा इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कारण भूत अंग अपाय अपंगत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम मत दुत प्रचंड मित गति अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्यंड बाड्य चाचरी संतव प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं रे नामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र उजाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी शन न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय जन न जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी से आदि से अदृशय कृशय भगवती छंद त्व प्रसाद कहते कि आशिज देश क्या भिज भिस क्या गंज कर्म क्या भंज भरम क्या भिज लोक है क्या आदित सुख है क्या अवधूत वर्ण के विभूत करने के राजंग प्रवाह है कि धर्म तो जा है कि आशोक वर्ण के सर्वा भरने के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपाउन उपे के आदादेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीने के अधीन है कि रोजी रजा के रहीम मेरे हाके के पाक भी ऐब है कि गैब उल गैब है कि आप उल गुना है कि सान सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राज कुनहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देशायक सर्वत्र पेशायक सर्वत्र राजायक सर्वत्र साजायक सर्वत्र दीनायक सर्वत्र लीनायक सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देशायक सर्वत्र पेशायक के सर्वत्र कालायक सर्वत्र पालायक सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजायक सर्वत्र राजायक सर्वत्र सोखायक सर्वत्र पोखायक सर्वत्र त्राणायक सर्वत्र प्राणायक सर्वत्र देशायक सर्वत्र पेशायक के सर्वत्र मानियक सदैव प्रदानियक सर्वत्र जापियक सर्वत्र थापियक सर्वत्र पहनयक सर्वत्र मानयक सर्वत्र इंद्रयक सर्वत्र चंद्रयक सर्वं कलिमे के परम भईमे के आकल अलमे के साहिब कलामे के हुस्नुल वजू है तमाम रुजू है हमेश सलाम है सली खत मोदाम में गनीम उल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंद उल मकान ने जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम में रजू उल निदान है हरीफ उल अजी मै रजायक यकीन है अनेक कुल तरंग है अपेद है अपंग है आजी जुल निवास है गनी मुल्क राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तो सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे गंजे अगाधे सुपंग सर्व भाग्य सुसर्वा अनुराग त्रिभुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत है किन्नर कुम प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है

गनी मुल्क राज है, गरीब उल निवास है, हरी फुल से कन है, रास लिख कन है, कलंक प्रणास है, समस्त निवास है, अगंजुल गनी में रजाय क्रीम है, समस्त जुबा है, साहिब किरा है, कि नरकम प्रणास है, बहिस्थुल निवास है, कसर बोल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीन है, समस्त अजीन है, परम परमीश है, परम समस्त परम परमीश समस्त अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीन उल जमा है, अमीक उल इमा है, करीम उल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि मैं तो सुबास है, कि अजब स्वरूप है, कि मैं तो विभूत है, कि मैं तो पसा है, कि आत्म प्रवाह है, कि अचलंग अनंग है, कि मैं तो अपंग है, मद भार छंद त्वै प्रसाद है, मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर भर अगंज हर नर प्रपन्न अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमन अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम मन छिजे अंग असने भंग उपमा पार गुत गत में तो उदार जल थल अमंड दिस्व स्वपंड जल थल महंत दिस्व बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आ जान बाहु एक सदा हु अंकार आद कथनी अनाद खल खंड के आल गुर मरे अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम आरि शिजगात अजिज न बातन चंजगातन रन बातन टुट पंडारन ठट अपार अडीठ धर्मत टीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांद त्वे प्रसाद करुणा ले है अर काले है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारन है सर्व उबारन है त्रित के तन है जग के कर्ण है मनमानी है जग जानी है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनास्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है करुणा कर है

नृपनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, आर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे,

नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रिय नादम विभूते कलंकर रूपे अलंकर अलंकी नमो आशासे नमो बाग बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपहु अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथ परमाथ अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे भुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते

बास की उबिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम की उतनी ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूछ तरियो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दशा मैं काहू पिशाह को शीस निवायो।

हमरे दुष्ट सब तुम कावह आप हाद मोहे बचावह सुखी बस है मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज करद करिय सब कौआ संघरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा।

जब उदकर्क करा करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब अकर्थ जब अकर्क कर तुह कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ

कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिंह भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंप होया अनुवास रूप सुयंप। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिख्य संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो ऋण काता। जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे, पुरख जमन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सवटारे। जो कल को एक बार

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किल्मिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शेख करता।

संबत सत्र सहस पणिजय अर्थ सहस पुंतीन कहित जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।

तै सार न जानी गुरु बाजो तो तै सार न जानी ते ही गुण संसार परम सुता सुत्या रहन वेहानी।

उतरे सगल विसुरे दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन भए सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहया भर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहया भर पूरे।

नान कुन संगमय उदारो सुखमनि सुखमरत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कज बिघन न लागे, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागे, प्रभ कै सिमरन पौ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साथ कै संग सर्व निधान, नानक हर रंग

बुझाए, प्रभु के सिमरन सब की सुझाए। प्रभु के सिमरन नाई जमत्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए। अमृत नाम हृदय माए समाए, प्रभु जी बसे साथ की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हरनेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै पाक, प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू ना झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बाणी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन ने चलासन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनचुनकार सुख, प्रभु सिमरन कांत ना पार। सिमरै से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन शरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पए से जति दाते, हर सिमरन नी चौकुण जाते, हर सिमरन तारी सब तरणा, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन क्यों सकला कारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिम

नानक हर हर अमृत बरखै। भजना की वर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओटर कै नाम, उदरै जन कोट हर जस करत संत दिन।

करै बवासन जय मार्स नमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावै तो पीहो मैं न जावै हर के नाम समसर कछ नाए नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए मन कामना तिरदे छुटै गर्भ गुमान न मनते हुटै सोच करै दिन असर

मिटै बिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते ऊंचा जा का मनो ए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देख सगल शेष साजना सोग दुख जन समिष्ठिता।

दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे आपन संगा प्रभराते, तुमरी उस्तत तुमते होए नानक वरना जानस को। सर्व त्रम मैं श्रेष्ठ त्रम हर को नाम जप निर्मल करम। सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सास संग दुर्मद मलेरिया, सगल उद्दम मैं उद्दम पलार का नाम जपो जी सदा। सगल बाणी मैं अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी।

पदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक बस कारण भी कोट गवावे। एक पीना दे दस पीड़ ले तो मूड़ा कौका करे। दिष्ठा कुर्सो नाई चारा ताकू की जय सन नमस्कारा।

भोजनन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार कोतावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तनई प्रोपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन भूजे मिथ्या सपे सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आर जा साज बिना कह वसुचा बिरथा नाम बिना तनंद मुकावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता ब्याय मेघ बिना जो खेती जाए गोबिन भजन बिन बिरते सब काम ज्यो कृपन के निरार दाम तन तन तेजन जे कट बस्योर नाव नानक ता कह बल बल जाओ रैत वर कचवर कमात मन नहीं प्रीत मुखो गण लाव जान नार प्रभु पर बीन बार पेकना काऊ पीन अवर उपदेश है आप न करै आवत जावत जन मैं मरै जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सिख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन्यन चरण पराता करो बेनती पाप ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत ने राव पाव स्याण अब सगलते रह सब का जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान तरंतर रह समाय सो सेवक जिस कृपा करे

पे न पाए। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवरना पेख कसबिन कोय। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्प को सो। ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्यमान जैसे राज।

ब्रह्म ज्ञानी सकल की दीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कज बुराना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदसी ब्रह्म

निर्मल मंत्र। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभा, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दरस बड़ पागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा

मिथ्या नाहि रस न प्रस मन में प्रीत निरंजन द्रस प्रति रूप न पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन नसने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद बिख्या पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्रिय जीत पंच दुख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा प्रस वैष्णो सो जिस ऊपर सुपरसन बिसन की माया ते हुई भिन्न करम करवत ने करम तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काउ फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ नाम जपावे नानको वैष्णो परमगत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मनते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल कर नित मन तन अर पै बिशन प्रीत हर के चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जवन प्रबोधे राम नाम मातम में सोधे राम नाम सारस पिय उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नावे वेद पुराण सिमरत बुझे मूल सुकम में जाने स्थूल चोवर ना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चोवर ना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसके गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे पस प्रेत मुगत पात्र को तारे सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहो जुगत कितै ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया धुर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसन तन पाए दिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोझी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुकत सो कहावे तैसा हरक तैसा उस सोग तैसा सदा अनंत तह नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख अजमन मुकत।

पसरियो आप होए अनंत तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। जैसे मध्य तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक उस तत् करह नेक जन अंत ना पारावार, नानक रचना परब्रची बहुविध अनेक प्रकार राष्ट्रपति। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट भय तीर्थ वासी, कई कोट बन प्रमहदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते। कई कोट आत्म ध्यान त्यार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नम तन नाम त्यावे, नानक करते कांत ना पावे। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगातम निकोर। कई कोट पर दुख न, कई कोट पर द्रव को हिरे, कई कोट पर दुख ना करे। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश भरमाहे। जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जित जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए। कई कोट पौन पानी वह संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सिर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदा नव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सुत तार, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस्तामस सत, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सिरवण थीवे। कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत चुकर मेरे गाच। सब ते नेहरे सबूते दूर, नानक आप अलिप त्रया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी। कई कोट जन्म है जीवे मरे, कई कोट बो जोनी फिर।

है। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी बड़ियाई, नानक सब मह रहा समाई। प्रभ पावे मानुक गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पति द्वारा आप करे अपन विचार। दुहासरिया का आप स्वामी, खेले बिकसंतर जामी, जो पावे सो कार करावे। नानक दृष्टि अवर नावे, कहो मानुक ते क्या हो आवे, जो तिस पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब किचले, जो तिस पावे सोई करे। अनजानत भिख्या मै रचे, जे जानत अपन आप बचे। परमे पूला दह दिस तावे, निमक माय चार कुंट पिर आवे। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जिन नाम मिले। खिन मह निच किट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज। जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे। जा को अपनी करे बखशीस, ताका लेखा ना गने जगदीश। जीवपन शक्ति की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बल नाही सहात, करण करावट सर्व को नात। आज्ञाकारी बपराजियो, जो तिस पावे सोई फुंथियो। कभू उच नीच में बसे, कभू शोक हरक रंग हसे। कभू निंद चिंद व्यवहार, कभू

क्रोध बिकराल, कभूंग सर्ब कियोतरवाल। कभू होए बैबण राजा, कभू पेकारी नीच का साजा। कभू अपिकृत में आवे, कभू पला पला कहावे। ज्यों प्रभु राख्या तिवि रहै, गुर प्रसाद नानक सच कह। कभू होए पंडित करे व्याख्यान, कभू मोन तारी लावे ध्यान। कभू तट तीरथ स्नान, कभू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमै परमैया। नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रपावे तिवे नचावे। जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा वरना कोए। कभू साध संगत हो पावे, उस स्थान ते बोर न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जलाए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना।

जैसे दृष्ट करे तैसा होए, आप आप प्रभ सोए, जो किचके नो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हो कै संग, बूझे देख करे विवेक, आप है एक आप है अनेक, मरना बिन सावन जाए, नानक सधीर आसमाए, आप उपदेश है समझे आप रचिया सब कै साथ, आपकी नो अपन विस्तार, सब किच उसका करना।

की त्रमते रहत संत कादो की सदमितिया कहत कीर्त निंदक का तुरी पया नानक जो तिस पावे सोई थिया संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दोखी को दीर्घय मिले सजाए संत का दोखी सदा सहकाई है संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है संत के दोखी की पूजन आशा संत का दोखी उठ चले निराशा संत के दोख ना तिष्ट कोय जैसा पावे तैसा कोई होय पया कीर्तना मिटे कोय नानक जाने सच्चा सोय सब कट तिसके वो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याओ सास की रास सब किस वर्त तिसका किया जय।

एक ना रंग किच त्रै गुण ते प्रभ पिन तिसे बुझाए नानका जिस होवै सुप्रसन्न अष्टपति अविनाशी परमन मैं राख मानु की तू प्रीत त्याग तिस्ते प्रह नाय किच कोय सर्व निरंतर को सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणे पाओ नानक के नानक कह मन ही अनुराव मनसा पूर्ण सुनना जोग जो कर पाया सो योग हरण पूर्ण जा का नेत्र पोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सजा के सर्व तोक सुनिया कर ताके राज मह राज जोग मैं जोगी तप मैं तपी सर गिरस्त मैं पोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस प्रका के अंत ना पाया की लीला जा की लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अबगाह पिता का जन्म किए जाने पूत सगल परोई अपने सोत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जिंदास नाम त्यावह से ते गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करह करंग नाना बिस्त की नो विस्तार प्रभु अविनाशी एकंकार नाना चल करे खिन माहे पूरे उपर अमृत सब ठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ।

सत सत त्यावन हार आप सत सत सपतारी आपे गुणकारी सबद सत सत प्रवक्ता सूरत सत सज सुनता बजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास प्रभाया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपोहे वसाना जिस ते उपजे तिस माय समाना बस्त महाय ले बस्त गढ़ाई ताको पिंड ना कहना जाई बुझ।

ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को पर पालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक सा समार नानक सो सेवक सा समार अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सिर पर राख अपने दास को देव बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राख ताकि गतमित कोई ना लाख प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया निकी की रही मैं कल राख भसम करै लश्कर कोट लाख।

संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर पाओ सममित विसारो, चरण कमल हृदय में अवतारो, करण कारण सो प्रभ समरत, दृढ़ कर

जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब सेव सख्त कहो कित ठाए। जब आप हे आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन खत डरे। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुखी अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चेत्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गाधे तब कौन छुटे कुन बंधन बाधे। अपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का है सुहाओ। आठ पहर प्रपेखो नेरा, मिटे अज्ञान विनसै अंधेरा। सुन उपदेस हृदय बसावो, मनिषे नानक फल पावो। हालत पलत दोयले हो सवार, राम नाम अंतर उर तहार। पूरे गुर की पूरी दीख्या, जिस मन बसै ति साज परीख्या। मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच वापार करो वापारी, दरगह निवह खेप तुम्हारी। एक टेक रखो मन माहे, नानक बोर ना आवह जाहे।

अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तहन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बस

संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ जीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एकस कट माहे।

प्राप के उस्तत करो संत मीत सावधान कागर चेत। सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन वसै सोहोत निदान। सारा विचा ताकि पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।